0: लिंगित,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जमनसाथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: प्रमुख लिंगित
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी लॉयड रेगो संगीत विनिल वेगस गैले लेजावना साथ प्रज्योत डेसा गीत उड़ी उड़ी

0: लोकलिंगित,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।